कहीं ज्यादा कहीं कम, कहीं ज्यादा कहीं कम, हर्रम तर्रम दुनिया के कैसे कैसे हम, कहीं ज्यादा कहीं कम।

वो बैठ जाएगा दिल मंदिर में पास है, मिलने की रात है, तू क्यों उदास है।

तेरे मन दिल के सतवेर बन जाऊंगी। मन से बात है, दिल में की बात है, तू क्यों उदास है?

प्यारी सगन मीठी मीठी चुभन प्यारी प्यारी तड़पती हूँ मैं आरज़ूए छुपाए तड़पती हूँ मैं आरज़ूए छुपाए।

0: रामजन की बधाई है बधाई है।
1: सीता बनवासिनी मंगल मनाए, सीता बनवासिनी मंगल मनाए, फूलों

0: राम के मन में सीता का ध्यान,
1: प्राणों की आरती जलाई है जलाई है।
2: आज राम जन्म की बधाई है बधाई है, आज राम जन्म की बधाई है बधाई है।

0: अब थोड़ा सा मुस्कुराओ रे।
1: मुझे पाल गाड़ी पे चलाओ रे, चलाओ चलाओ चलाओ रे। काहे दिया घबराओ रे, मोरा काहे दिया घबराओ रे। रुक जाओ रे, जाओ रे, रुक जाओ रे। मुझे बाल
0: आओ रे, आओ रे, आओ आओ रे।

मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मे